ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

啊，这是 KM 先知啦，苏尼古尔切特里，刚我哋有呢条吉他来，我哋阿姆苏尼帮你唱个大鼓啦，看你个咯，我哋有大只吉他，苏尼我哋就摆个听啦，我用 phone 买搞那啷，我哋个啲啲啥子阿姆，我哋就听个，我哋买嚟搞呢，个拉开呢，我哋话过，即系对只吉他买嚟，睇下摆嚟听，我哋吉他苏尼，但系帮你嚟苏尼话，苏尼话呢，拍个睇下呢 ，anyway， 我哋嚟拍个呢 ，enjoy 搞呢，我哋个啲我哋话过，我哋就唔帮你摆个啦，我哋就摆个 area 啲嘢，帮你，晒到我哋用咗啦，而家 can 啲啦，我哋用咗个啥，八七八八呢，我哋个节目就 share 落嚟，我哋帮你拍个呢，就嚟唱。हजुर यति भन्दै अब हामी भोइस अफ गोर्खास तर्फ लागौँ र हाम्रो विष्णु राई भाइसँग बहिनी सोनु बहिनी सोनिया सुनार राईले गर्नुभएको कुराकानी तपाईँहरूको सेवामा म प्रस्तुत गर्दैछु। यता छ बजेर छब्बिस मिनट गएको छ।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।